0: वजूद अल्लाह के अजाब में गिरफ्तार होने वाले हैं। यहाँ खास तौर पर यह बात निगाह में रहनी चाहिए कि जिस वक्त ये आयात नाजिल हुई हैं, वो वक्त वो था जबकि मक्के के मुसलमानों में से कोई एक भी ऐसा न था जिसके महबूब तरीन रिश्तेदार कुफ्र जाहिलियत में मुब्तला न हो। कोई मर्द ईमान ले आया था तो उसकी बीवी अभी काफिर थी, कोई औरत ईमान ले आई थी तो उसका शौहर अभी काफिर था, कोई नौजवान ईमान ले आया था तो उसके माँ बाप और भाई बहन सबके सब कुफर में मुब्तला थे, और कोई बाप ईमान ले आया था तो उसके अपने जवान जवान बच्चे कुफर पर कायम थे। इस हालत में हर मुसलमान एक शदीद रूहानी अजियत में मुब्तला था और उसके दिल से वो दुआ निकलती थी जिसकी बेहतरीन तर्जुमानी इस आयत में की गई है। आंखों की ठंडक ने इस कैफियत की तस्वीर खींच दी है कि अपने प्यारों को कुफर जाहिलियत में मुब्तला देख कर एक आदमी को ऐसी अजियत हो रही है जैसे उसकी आंखें आशूब चश्म से उबल आई हों और खटक से सुइयां सी चुभ रही हों। इस सिलसिला कलाम में उनकी इस कैफियत को दरअसल ये बताने के लिए बयान किया गया है कि वो जिस दीन पर ईमान लाए हैं पूरे खुलूस के साथ लाए हैं। उनकी हालत उन लोगों की सी नहीं है जिनके खानदान के लोग मुख्तलिफ मजहबों और पार्टियों में शामिल रहते हैं और सब मुतमईन रहते हैं कि चलो हर बैंक में हमारा कुछ न कुछ सरमाया मौजूद है।
1: आप सुन रहे थे इंस्पायर एफ एम 105.1 की नशियात में तफहीमुल कुरान का एक हिस्सा। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, चलते हैं इंस्पायर एफ एम की रोजमर्रा की बकिया
2: नशियात। दिस प्रोग्राम विल कंटिन्यू आफ्टर द ब्रेक। कंटिन्यू लिसनिंग टू इंस्पायर एफ एम। इंस्पायर एफ एम। इंस्पायर 105.1 एफ एम।
3: بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا.
4: Days of Dhul Hijjah on Inspire FM. Represent your gratitude to Allah by donating Qurbani to those individuals in need. Qurbani is a highly recommended sunnah and is obligatory to those of the Hanafi school of thought. This great act symbolizes our willingness to make such a significant sacrifice for the pleasure of our Lord. Make sure to stay tuned to Inspire FM. Assalamu alaikum.
5: Why do Tops Pizza deliver the top pizzas in Luton? For a start, all the toppings are 100% halal and Tops use fresh dough every day. Then there's the cheese, the highest quality available. And when it comes to food preparation, cleanliness is taken as part of our faith. So that just leaves the taste, choice and great offers, including buy one, get one free on all medium, large and extra large pizzas. Tops Pizzas, Wellington Street, LU15AA. Order online, topspizza.com or via Just Eat. Download our app or call 01582 725000.
6: Lee Grade Heating Supplies. With over 20 years of experience, we're the largest independent plumbers merchant in the area, specialising in all types of plumbing and heating, as well as combination boilers and megaflow cylinders. Whether you need a new bathroom or a complete new heating system, LHS is the place. Come along to our brand new bathroom showroom at Unit 1, 3 Chorland Lane, Luton, to see the latest range of quality bathrooms. Or log on to leegrave.net. We're an Interpart approved stockist for all genuine spares. Our new store in Bedford is now also fully opened. Lee Grave Heating Supplies. Call Luton 84 86 88.
7: Assalamu alaikum. Welcome to Inspire FM's exam preparation jingles. My name is Tazeeb and we will motivate and give tips to our upcoming exam sitters. Think about the feeling of opening those results and seeing exactly what you wanted. That version of you is still waiting at the finish line. All you have to do is keep walking towards it. Every page you read and every practice question you finish is a step closer to that win. Visualize the success. Log in and go get it. You're closer than you think. Thank you for listening to Inspire FM jingles. Continue listening to Inspire FM for more exam tips.
8: It's Qurbani time again. Who will you trust to perform this noble obligation? Last year, UKIM delivered fresh, healthy and nutritious meat to over 400,000 orphans, widows and the needy around the world. With your Qurbani, we made their Eid al-Adha a big day. For as little as £35, you can make this year's Eid al-Adha even bigger. Call now on 0207 387 2157 or visit ukim.org and book your Qurbani today.
9: Assalamu alaikum guys, this is me, Baby Bilal.
10: And it's me, Fireman Giles.
9: We are here to tell you video about the kids, actually, I'll make you must tune into, because Brother Khalil, I don't know where he is. He's not here at the moment. If

बज़्म नात के साथ मैं आपका मेज़बान मैं रोज़ गुल हर जुमातुल मुबारक की तरह आज भी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। बज़्म नात में शामिल होती है हमदे बारी ताला नात रसूल मकबूल और सुफियाना कलाम। आप भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं और अपनी आवाज़ दूसरों की समातों की नज़र कर सकते हैं। 01582481822 डायल कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए 07794818122। सामीन, आज की बज़्म नात की इब्तदा एक ऐसी खूबसूरत पंजाबी हमद से करते हैं जो बंदे को अपने रब के करीब ले जाती है। सावां दी तस्बीह दे पढ़िया कर अल्लाहु। ये हमद हमें याद दिलाती है कि अल्लाह का जिक्र दिलों की रोशनी है और सच्ची तौबा अल्लाह की रहमत को करीब कर देती है। प्यारे सामीन, अगर दिल में बोझ हो, अगर आँखों में नमी हो, अगर ज़िंदगी थका दे, तो आज अपने रब से बात कीजिए, क्योंकि वो सुनने वाला भी है और माफ़ करने वाला भी। आइए अपने दिलों को नरम कीजिए, लबों पर अल्लाह का ज़िक्र सजाइए और मोहब्बत और अकीदत के साथ समात फरमाइए।

कोई पासपोर्ट संभाल रहा है, कोई सामान बांध रहा है और कोई रातों को जाग जाग कर मदीने के ख्वाब देख रहा है। दिल यही कहता है, या अल्लाह एक बार अपने घर बुला ले, एक बार अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दर की हाज़िरी नसीब फरमा दे।

पसंदीदा नातों के नाम हमें भेजते रहिए। ये महफ़ल आपकी मोहब्बतों से सजती है, और अपनी दुआओं में इंस्पायर एफएम की पूरी टीम को भी याद रखिएगा। अल्लाह इस प्लेटफार्म को हमेशा दीन, मोहब्बत और इश्के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत का ज़रिया बनाए रखे। अभी आपकी समातों की नज़र लमियाती नज़ीरु काफ़ी नज़रिन। सुनते रहिए इंस्पायर एफएम 105.1।

0: अच्छा अब यकनस्टाइन की तरफ आते हैं। मैंने आपको हर सेशन के साथ कुछ चीज़ें समझाई हैं कि अल्फाज के कुछ ख़ास मायने होते हैं। अभी नस्ताइन असल में लफ्ज़ है आउन से, आउन, ऐन, वाव और नून, इसकी असल है ऐन, वाव और नून, आउन। और ये अरबी में बहुत सारे अल्फाज हैं मदद के लिए, उनमें से एक लफ्ज़ है। ओके मदद के लिए मद्दा यमुद्दू भी आता है, नसरा यनसुरु भी आता है, सआदा युसाइदु भी आता है, और भी अल्फाज आते हैं मदद के लिए, काफ़ी सारे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। लेकिन हर लफ्ज़ का एक ख़ास रंग होता है। तो आउन में क्या खसूसियत है पहले ये समझ लें, फिर नस्ताइन सही तरह से समझ में आएगा। आउन में होता ऐसा है कि जैसे फ़र्ज़ करें, मैं मिसाल देता हूँ, आप गाड़ी चला रहे हैं, आपका टायर जो है वो पंक्चर हो गया, तो आपको साइड पे गाड़ी खड़ी करनी पड़ी। अब आपकी गाड़ी के पीछे डिक्की में जैक है, आप उसको गाड़ी को उठा रहे हो स्पेयर टायर लगाने के लिए ना, लेकिन आप में इतनी तवानाई नहीं है, इतनी कुव्वत नहीं है कि आप उसको पूरी तरह से उठा सको। तो आप थोड़ी देर तक तो उठा सके, लेकिन फिर वो बहुत भारी हो गया और आपसे उठाया नहीं गया। तो रास्ते से कोई गुजर रहा था, आपने कहा भाई आप ज़रा मेरी मदद कर देंगे थोड़ी सी, इससे ज़्यादा मुझसे हो नहीं रहा। तो उसने फिर आपकी थोड़ी सी मदद की और फिर वो उठ गया, फिर आपने टायर चेंज कर लिया। चलो जी, एक मिसाल हो गई। एक और मिसाल है, आपका टायर जो है वो पंक्चर हुआ, आपने साइड पे गाड़ी खड़ी की, आप गाड़ी में ही बैठे हुए हो, खिड़की आपने नीचे की, कोई गुजर रहा था, यार ज़रा मैं ज़रा ये मेरा फेवरेट गाना लगा हुआ है मैं सुन लूँ, तुम ज़रा टायर चेंज कर दोगे मेरा, ये यू नो। तो आपने मदद, दोनों सिनेरियो में आपने मदद मांगी है, लेकिन एक सिनेरियो में और दूसरे सिनेरियो में फ़र्क है। एक सिनेरियो में आपने अपनी पहले पूरी कोशिश की जहां तक कर सकते थे, और जहां आप अपनी लिमिट तक पहुंच गए, अपनी इंतहा तक पहुंच गए, उस इंतहा पे पहुंचने के बाद फिर आपने मदद मांगी। और दूसरी सूरत हाल में क्या हुआ, आपने क्या अपनी पूरी कोशिश पहले की ना, बस मदद मांग ली और फिर बैठे, यार को मदद नहीं कर रहा, कोई मेरी मदद ही नहीं करता, मैं बैठा हूँ कब से मदद मांग रहा हूँ, मदद आ ही नहीं रही। जब इंसान अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ले और फिर उसकी अपनी पूरी कोशिश काफ़ी ना हो, और उसके काफ़ी ना होने की वजह से अब वो मज़ीद मदद मांगे, उसको कहा जाता है इस्तेआना आउन से। तो हम कहते हैं आना कल्ला, दुआ है अरबी में आना कल्ला, अल्लाह ताला आपको आउन दे अपनी। इसका मतलब क्या है, आप बड़ी कोशिशें कर रहे हैं लेकिन आपकी कोशिशों की एक हद है, उस हद से आगे आप इंसान होने के नाते नहीं जा सकते, उसके मजीद अल्लाह ताला आपकी मदद करे। और ये अल्लाह ताला का एक कायदा है, वो क्या है, अल्लाह किसी की मदद नहीं करता जो पहले अपनी पूरी कोशिश ना कर ले। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दावत दी, उनकी दावत की बहुत मुखालफत की गई, उस मुखालफत के जवाब में उनको आग में फेंका जाना था, और उस तमाम शिद्दत को बर्दाश्त करने के दौरान अल्लाह ताला ने पहले से नहीं बता दिया आग ठंडी होगी फिक्र ही ना करो, पहले अपनी तरफ से इंतहाई सब्र उन्होंने खुद किया है, और जब फेंके गए हैं उसके बाद हुक्म क्या आया है, या नारू कुनी बर्दन व सलामन अला इब्राहिम, आग ठंडी हो जा। अल्लाह ऐसा भी कर सकता था कि आग जलती ही ना शुरू से, वो जलाने की कोशिश करें जले ही ना, ऐसा भी हो सकता था, वो नहीं किया। मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से में लाठी क्या बन जाती थी, सांप बन जाती थी। मैं कहता हूं अगर सांप बनी जाती थी, और इतना डरावना सांप था, और वो फिरौन के महल के अंदर मौजूद था, और लाठी फेंकी और सांप बन गया है, तो मसला ही क्या था, सांप ने थोड़ा सा ऊपर चढ़ के एक ही दफा तो डसना था, सारा मसला हल, फिरौनियत का सारा मसला हल, हुकूमत गिर जाती, मूसा अलैहिस्सलाम उसी वक्त हुक्मरान बन जाते, सारी कहानी खत्म। वो इधर उधर सांप जो है वो हैयतुन तसआ इधर उधर घूम रहा है, लेकिन कुछ कर नहीं रहा वो सांप, वो फिर उसको दोबारा सोटी बना दिया। मैंने कहा मेरे पास सांप होता तो मैं तो पहले उसके मुंह पे फेंकता फिरौन के, मसला हल करो पहले, सांप का फायदा क्या, डसेगा नहीं तो, राइट। लेकिन अगर ऐसा होता तो क्या मूसा अलैहिस्सलाम की इंतहाई कोशिश का पहले इम्तिहान दिया जाता कि नहीं, पहले इंतहाई कोशिश फिर अल्लाह की मदद आती है, पहले इंतहाई कोशिश फिर अल्लाह की मदद। सहाबा बदर में गए हैं, हमारी सीरत नबी की सीरत में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा बदर तक पहुंचे हैं, आपको पता है बदर का हवाला कुरान ने दो मरतबा दिया है और दोनों मरतबा बताया है कि फरिश्तों की तरफ से अल्लाह ताला ने फरिश्तों की मदद भेजी थी बदर में। वलकद नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन वअंतुम अज़िल्ला, अल्लाह ने तुम्हारी बदर में मदद की थी और तुम कमज़ोर थे। जो फरिश्ते हैं, ऐसा भी हो सकता था कि सहाबा अभी मैदान जंग में पहुंचे भी नहीं और फरिश्ते सारा मामला ख़त्म करके बैठे हुए क्योंकि अल्लाह ने मदद भेज दी। लेकिन पहले क्या किया, आप बार बार किस्सा सुनते हैं, 313 थे, इतनी सी हमारे पास जो है वो तलवारें थीं, दो तीन घोड़े थे, कुछ ये चीज़ ये सामान नहीं था और उनकी 1000 फौज थी। अल्लाह ताला ने 2-3 हज़ार फरिश्ते भेजे थे। और फिर ये भी कह दिया था युमदिदकुम रब्बुकुम भी खमसतिम मिना मलाइकति मुसव्विम, खमसति आलाफ मिना मलाइकति मुसव्विमीन, 5000 भेज दे, उसके लिए क्या है, 1000 के मुकाबले में 5000 भेज दे, यू नो उहद में 3000 से क्या 5000 भेज दे। लेकिन अल्लाह ताला ने पहले से मदद नहीं की। पहले क्या देखना होता है, इंसान की भरपूर कोशिश। ये जो दावा किया है ना, ये वो जिसको कहते हैं ना छोटे मुंह बड़ी बात, ये कहलवा दी अल्लाह ताला ने। अल्लाह ताला हम आपसे उस वक्त मदद मांग रहे हैं जब हम अपनी पूरी कोशिश कर चुके हैं, ये बात कही जा रही है। हम तेरी इबादत करते हैं और तेरी इबादत करने में बड़ी कोशिश करते हैं और जब अपनी कोशिश की हद तक पहुंच जाते हैं और फिर इस बात का एहसास होता है कि इससे आगे हम खुद कर नहीं सक रहे, तब हम आपकी मदद मांगते हैं। ये क्या रास्ता है। अब आप इस चीज़ को कंपेयर करें, इसका तकाबुल करें, हमारा जो रवैया है इस्लाम में आज, हमारी कौम का अल्लाह ताला से मदद मांगने का जो रवैया है, जो आप आम तौर पर देखते हो अपने अंदर, अपने दोस्त अहबाब के अंदर, फैमिलीज़ के अंदर, कल्चर के अंदर, क्या देखते हो? बस जी अल्लाह की मदद आई नहीं रही, क्या कर सकते हैं, देखें जी बस अल्लाह ने यही लिखा हुआ था, क्या हो सकता है, हाथ पे हाथ पे रख के मदद का इंतज़ार हो रहा है, यही बात होती है ना। वो पुराना किस्सा है, क्रिश्चियंस बहुत यूज़ करते हैं लेकिन बात सही है। वो कहते हैं एक सैलाब आ रहा था तो सब शहर से निकल रहे थे क्योंकि ऐलान आ गया था कि सैलाब आ रहा है। एक साहब ने कहा नहीं, मेरा रब मेरे लिए काफ़ी है, तुम लोग जाओ, मैं अपने रब से मदद मांगूंगा। सारे निकल गए, एक बंदा रह गया गांव में, सैलाब आ रहा है, पानी बढ़ता चला गया तो एक बंदा किश्ती से गुजर रहा था, उसके छोटी सी उसने किश्ती खुद ही पट्ठों से बनाई उसने, यू नो, और बना के कहता है भाई आ जाओ मेरे पास, एक और की जगह है। नहीं नहीं मेरा रब मुझे मेरी मदद करेगा, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं। अब पानी ऊपर तक चला गया तो वो अब छत पे खड़ा हुआ है अकेला, पानी ऊपर उठ रहा है, ऊपर से हेलीकॉप्टर भी आ गया, उसने देख लिया, उसने कहा आप आ जाएं ये पकड़ लें। नहीं नहीं मेरा रब मेरी मदद करेगा। बंदा डूब गया, फरिश्ते पकड़ रहे हैं, वो कहते हैं मेरे रब ने मेरी मदद नहीं की। तो फरिश्ते कहते हैं गधे, हमने पहले पूरे गाँव से बुलवाया, फिर हमने ये बंदा भेजा, फिर उसके बाद हेलीकॉप्टर भेजा। बात क्या कही जा रही है उस लतीफे में, वो ये है कि हमें मदद कबूल करनी पड़ती है जब अल्लाह ताला की तरफ से आती है, अपनी कोशिश भी करनी पड़ती है। हम सिर्फ यही नहीं कह सकते बस अल्लाह की तरफ से मदद आएगी तो देखा जाएगा, जब तक वो नहीं आएगी अब कुछ भी नहीं हो सकता। और ये कभी कभी हम इस एक्सट्रीम पे चले जाते हैं ना, क्योंकि बात तो ठीक है, अल-क़ादिर फ़िल-हक़ीक़ा लैसा वला का क़ादिर फ़िल-हक़ीक़ा इल्लल्लाह, असल में कुदरत सिर्फ अल्लाह की है। मैं यहाँ खड़ा चल रहा हूँ लेकिन मेरे चलने की सलाहियत अल्लाह ताला की तरफ से ही आ रही है। तो आप बढ़ चढ़ के अगर आप खुतबा दे दें कि हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, अल्लाह ताला का कुन जब तक ना हो कुछ भी नहीं हो सकता, अब ये कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, बार बार कहते रहो तो इंसान के दिमाग में क्या बात आ जाएगी, वाकई कुछ नहीं हो सकता, मैं भी कुछ नहीं कर सकता, मेरी सूरत हाल बिल्कुल नहीं बदल सकती, बस अब बस अल्लाह ही करेगा, अब अल्लाह की मदद मांगी जा सकती है। और ये मैं बात ख़ास इसलिए दोहरा रहा हूँ कि जब मैं पहली दफ़ा पाकिस्तान आया था इस टूर में कुछ महीने पहले, तो सबसे आम सवाल मुझे ये मिला था, अल्लाह ताला मेरी दुआएँ क्यों नहीं कबूल कर रहे, अल्लाह ताला से मैंने बहुत मदद मांगी है मदद आ नहीं रही। मैंने आपने क्या किया है, दुआ और क्या किया, और ज्यादा दुआ, रोजे भी रखे हैं मैंने। आपने खुद कुछ करना नहीं है, बस मदद मांगनी है। और ये किस चीज़ की मुखालफत है? या का नस्ताइन की, या का नस्ताइन। अच्छा आओ, अगर इसकी तरतीब बदल दी जाती, या का नस्ताइन हुआ या का नाबुदू, तो क्या फर्क पड़ना था? थोड़ा सोचते हैं इस बारे में। असल में पहली बात तो यह है कि हमारी इस ज़िंदगी का बुनियादी मकसद और जो असल नतीजा था पहली तीन आयात का, वो मदद मांगना नहीं था। उसका नतीजा पहला क्या था? मुझे इस रिश्ते की जो मुतालबे हैं ना, वो पूरे करने हैं। तो उस रिश्ते की बुनियाद क्या है? इस्तियाना नहीं है, मदद मांगना नहीं है। उस रिश्ते की बुनियाद क्या है? इबादत। और यही एक बुनियादी फ़र्क है हमारे मज़हब में और बाकी तमाम मज़ाहब में, ये बात भी समझ लेना। बाकी तमाम।
1: Assalamu alaikum. In Luton and its surrounding areas, it is now time for Salat al-Isha.
2: Luton aur iske mazafat mein namaz-e-Isha ka waqt hua chahta hai.
3: This azan has been sponsored by Ideal Properties. Contact us on 01582 72110 or log on to www.idealpropertiesltd.co.uk.

0: கூடாது.
1: Would you like to sponsor the Azan? If so, give us a call on 01582-481-810 or email us on info@inspirefm.org.
2: ये जो कोशिश और ये जो आप मुतालबा कर रहे हो वो इबादत के तहत है, यानी मैं अल्लाह ताला की इबादत करते हुए अब मेरी ज़िंदगी के मकसद और उसके जो गोल्स हैं, जो मेरे अहदाफ हैं, जिन चीज़ों के पीछे मैं भाग रहा हूँ क्योंकि मैं अल्लाह ताला का अब्द बनना चाह रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, अब उन गोल्स पे भी असर पड़ा. जिन चीज़ों के पीछे मैं पहले भाग रहा था इयाका नअबुदु से पहले, जिन चीज़ों के पीछे भाग रहा था, अब उन चीज़ों के पीछे नहीं भाग रहा, किसी और चीज़ की तरफ दौड़ रहा हूँ. अब उस चीज़ की तरफ दौड़ रहा हूँ तो मुझे मदद की ज़रूरत है, अब मैं अल्लाह ताला से मदद मांगूंगा. तो मेरी दुआओं की असल नेचर ही बदल गई पूरी तरह से. और अब हम इस मोड़ पर आ गए हैं मुसलमान कुरान से इतने दूर कि अब हमने अपना अल्लाह ताला से जो रिश्ता बनाया हुआ ना इस वक्त अक्सरियत ने हमारी, उसमें और जो ईसाई ने जीसस के साथ रिश्ता बनाया हुआ है, जो हिंदू ने अपने मंदिर में रिश्ता बनाया हुआ है अपने खुदाओं से, उसमें तकरीबन कोई फ़र्क नहीं रहा, क्योंकि हम बस अब एक ख्वाहिशात का मज़हब है. अल्लाह ताला मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं कर रहा, मेरी मुश्किलें आसान नहीं कर रहा, मैं तो इतनी नमाज़ें पढ़ रहा हूँ, मैं तो इतनी नमाज़ें पढ़ रही हूँ, मैं तो उम्रा भी किया था, मैं तो फ़लाने रोज़े नफली रोज़े भी रखे थे, मैं तो सदका भी दिया था, फिर भी कोई बात नहीं मान रहा. इस सारे में क्या है, असल बुनियाद क्या हो गई है, किसी ना किसी तरह मेरी ख्वाहिशात पूरी हो जाए. फातिहा का मकसद ख्वाहिशात नहीं है, फातिहा का मकसद है मकसद, इंसान की ज़िंदगी में मकसद डालना. एक दफ़ा मकसद आ जाए ना तो अब वो मदद किस चीज़ में मांगेगा, या अल्लाह जिस मकसद के लिए मुझे बनाया है ना उस मकसद को पूरा करने में भी मुझे आपकी क्या चाहिए, मदद चाहिए. इयाका नअबुदु असल में मकसद है, और इयाका नस्तईन उस मकसद को पूरा करने के लिए हम अल्लाह ताला से मदद मांग रहे हैं. इसकी एक और मिसाल, आखिरी मिसाल आप समझ लें ताकि ये बात जहन में बैठ जाए. आप सफ़र पे जा रहे हो, आप चलो आप फ़र्ज़ करो आप पिंडी से आप लाहौर जा रहे हो, ठीक है, आप गाड़ी पे सफ़र पे निकले हो, रोड पे निकले हो, रस्ते में आपको गाड़ी में पेट्रोल कम हो गया, आपको रुकना पड़ेगा, है कि नहीं, आप रुकोगे, मदद के लिए रुकोगे ना, गाड़ी को मदद की ज़रूरत है, आपको भूख लगी है आप खाने के लिए रुकोगे, आपके जिस्म को मदद की ज़रूरत है ना, रुकोगे हमेशा के लिए, थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए, क्यों, क्योंकि वो आपका मकसद नहीं है. आपका मकसद क्या था, लाहौर, तो आपको यहाँ रुक के थोड़ी मदद लेके फिर आगे चलना है, और रुकने का भी एक मकसद था ताकि बाकी सफ़र पूरा हो सके. समझ में आ रही है बात, हमने क्या किया है, वो जो स्टॉप्स आते हैं ना जिंदगी में वही मकसद बन गए हैं. या अल्लाह और खिला दे, और खिला दे, और पेट्रोल डाल दे, और पेट्रोल डाल दे. किस लिए डाल दूँ, बस पेट्रोल बड़ा अच्छा लगता है मुझे. उधर अब आपका मकसद क्या बन गया, इस पेट्रोल स्टेशन से अगले पेट्रोल स्टेशन तक जाना बस. और कभी कभी कहना है वो पुराना पेट्रोल स्टेशन अच्छा था वहीं वापस चलते हैं, या अल्लाह वहां दोबारा वापस पहुंचा दे. ये मिसाल आप समझ लें कि हम एक सफर पर हैं और उस सफर पर हमने अल्लाह ताला से मदद मांगी है, क्योंकि जब आप लंबे सफर पर जा रहे हो तो आप थक जाते हो, तो फिर आपको मदद की जरूरत होती है. इयाका नअबुदु व इयाका नस्तईन, इसमें एक और बड़ी प्यारी बात यह है कि इयाका नअबुदु असल में हमारी कमिटमेंट है अल्लाह ताला के साथ, और इयाका नस्तईन में हमारी ज़रूरियात पूरी हो रही हैं. अल्लाह का मुतालबा किस में पूरा हो रहा है, इयाका नअबुदु, और हमारा मुतालबा किस में पूरा हो रहा है, इयाका नस्तईन. जो चीज़ अल्लाह के लिए है वो पहले होनी चाहिए, जो हमारे लिए है वो बाद में होनी चाहिए. तो इयाका नअबुदु पहले, इयाका नस्तईन बाद में, इयाका नअबुदु इयाका नस्तईन. फिर एक और बहुत ही खूबसूरत बारीक सी चीज़ इस आयत में यह है कि इयाका दो दफ़ा जिक्र करना लाजमी नहीं था. इयाका नअबुदु व नस्तईनु अरबी के कवायद के अतबार से सही है. अगर आप कहो इयाका नअबुदु व नस्तईनु, हम सर तेरी ही इबादत करते हैं और मदद मांगते हैं, उसमें कोई गलत बात नहीं है. लेकिन कुरान ने अपनी हिकमत में इयाका का दो दफ़ा जिक्र किया, इसको इतनाब कहते हैं. इतनाब कहते हैं अरबी में जो बात बार बार नहीं की कहने की ज़रूरत थी उसको दो दफ़ा कहना, या दो से ज़्यादा मरतबा भी कहना, इतनाब इस स्टाइल को इतनाब कहा जाता है. तो कुरान ने यहाँ पर इतनाब का इस्तेमाल किया. اياك نعبد واياك نستعين. اس اتناب کا کیا فائدہ ہوا؟ فائدہ یہ ہوا کہ کچھ معاملات میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہی مدد چاہیے ہوتی ہے، اور کچھ معاملات ذاتی بھی ہوتے ہیں جس کا عبادت سے تعلق نہیں ہوتا. کبھی کب ہوتا بھی ہے، بنیادی طور پر عبادت سے تعلق ہوتا ہے، لیکن بہت ساری زندگی میں سچویشنز آتی ہیں جن کا عبادت سے تعلق نہیں ہے، پھر بھی اللہ کی مدد چاہیے. تو اگر کہا ہوتا نا ایاک نعبد ونستعین، تو صرف ایک ہی طرح کے معاملے میں ہم اللہ تعالیٰ کی مدد مانگتے ہیں. کس طرح کے معاملات میں؟ عبادت سے متعلق معاملات میں، صحت سے متعلق معاملات میں نہیں، فیملی سے متعلق معاملات میں نہیں، پیسوں سے متعلق معاملات میں نہیں، اپنی ڈپریشن کے معاملات میں نہیں، اپنی انگزائٹی کے معاملات میں نہیں. لیکن اب ایک جوڑ بھی بن گیا اور ایک علیحدگی بھی ہو گئی، یعنی دونوں اکٹھے بھی ہو سکتے ہیں اور دونوں الگ الگ بھی ہو سکتے ہیں، اور ان دونوں کی گنجائش اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دی. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اچھا،
0: Subscribe now to the Bayana YouTube channel to watch the rest of this series and more great content from Ustad Norman Ali Khan.
2: تو جب آپ کسی کو بڑی نفرت سے ہدایت دینے کی کوشش کرتے ہیں، یہ لوگ تو جہنمی ہیں، جہنمی، ان کو دیکھو کافر ہیں، یہ کافر، یہ فلانے ایسے ہیں، یہ فلانے مشرق ہیں، یہ فلانے ادھر، جس جو الفاظ آپ استعمال کر رہے ہو، یہ اہتنا کی روح سے صحیح ہیں کہ نہیں؟

0: कब मैं सिर्फ अभी आपको इंट्रोडक्शन दूंगा, फिर आपको ब्रेक दूंगा। इसको समझने के लिए एक मिसाल समझ लें। मैंने कल आपको एक अजीब सी मिसाल दी थी। फ़र्ज़ करें कि आप मेरे पास आके कहें आज के बाद नुमान तुम मेरे गुलाम हो। मैं कहूँ चलो ठीक है, सही है। अब फ़र्ज़ करें आपने कहा मैं ग़ुलाम हूँ, मैंने कबूल कर लिया, और फिर मैं बैठा हूँ आपके साथ सोफ़े पे आधा घंटा, 20 मिनट 40 मिनट, आपने कुछ कहा ही नहीं। फिर मैं कहूँ अच्छा ग़ुलाम तो मैं हूँ, कुछ करवाना है? अगर मेरा जो मालिक है वो कुछ कहेगा नहीं कि जाओ घास काटो, घर साफ करो, खाना पकाओ, जब तक वो कुछ कहेगा नहीं तो वो मालिक कैसा हुआ? क्योंकि अगर मालिक कुछ कहे नहीं तो मैंने क्या करना है? अपनी मर्जी, उसके कहे बगैर उसके मालिक होने का, उसके रब होने का नाता पूरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक रिश्ता है ना, मालिक और रब और अब्द। रब जब तक हिदायत नहीं देगा, इंस्ट्रक्शन नहीं देगा, अहकाम नहीं देगा, कहेगा ये करो ये ना करो, ये इस वक्त करो ये ऐसे करो, इस चीज़ को सुनो, इस चीज़ पे गौर करो, जब तक वो ये नहीं देगा तो फिर रब सिर्फ कहने का हो गया। मैंने मान तो लिया कि वो रब है लेकिन प्रैक्टिकली कुछ हो नहीं रहा। ये भी होता है, मैंने ये चीज़ वहाँ US में तो बहुत कम देखी, मुसलमान कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा देखी। हमारे यहाँ टाइटल्स बहुत मिलते हैं जिनसे कुछ होता नहीं है। तो मुझे फलाने प्रोजेक्ट का डायरेक्टर बना दिया या एडवाइज़र बना दिया, या एक मैं बेना के साथ एक यूनिवर्सिटी थी, मुल्क का नाम मैं नहीं लूँगा, उन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की हमारी यूनिवर्सिटी का बेना इंस्टीट्यूट के साथ बहुत तावन है। 10 साल पहले की बात है, कुछ भी नहीं किया हमने, लेकिन एक सर्टिफिकेट है, वो तावन है। यानी कहने को तो एक रिश्ता है लेकिन प्रैक्टिकली कुछ है कि नहीं? नथिंग, कहने की बात है बस। और लेकिन वो जो हाथ शेक करते हुए फोटो लेना बहुत ज़रूरी है, वाह बड़े मज़े के हैंड शेक्स होते हैं यहाँ। आप सिर्फ हाथ नहीं मिलाते हैं, कहते हैं फिर पकड़ते हैं फिर ऐसे देखते हैं, क्योंकि उसका असल मकसद हाथ मिलाना नहीं होता, हाथ मिलाने का रिकॉर्ड होना होता है, उसको फ्रेम करना होता है। अल्लाह ताला ने अगर अपने आप को रब कहा है तो रब होने का तकाजा यह है कि वो अपने बंदे को बताए मेरा बंदा होने के नाते तुम क्या करोगे। अगर वो बताएगा नहीं तो रब किस बात का हुआ फिर वो? तो क्योंकि हमने अभी खुद ही कहा ना कि हम अब बनने को तैयार हैं, इया का नाबुदो, हम आपकी मदद मांग रहे हैं, तो हमने पहली मदद क्या मांगी? ए दिना, हमें हिदायत दें, हमें बताएं हम क्या करें। अच्छा अब तो हो गए लेकिन हमें पता नहीं करना क्या है, कैसे करना है। और इस एहतिरा में दो पहलू आ गए, दोनों इया का नाबुदू से भी मुतालिक है, इया का नस्ताइन से भी मुतालिक है एहतिरा। यानी हमें हिदायत दें कि आपकी मदद कैसे आएगी दूसरे दर्जे में, और पहली बात हमें हिदायत दें हम इबादत कैसे करें, आपको खुश कैसे करें। पुराने मजाहिब में पता क्या होता था, जो बिगड़ी हुई शक्ल है इस्लाम की, इस्लाम जब अंबिया लेकर आए और फिर आने वाली नस्लें उसको भूल गईं, खुदा को अगर खुश करना है ना तो उसको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, वो ऐसे ही नहीं खुश हो जाता। कोई ना कोई बकरी ज़बह करके उसका खून डालना पड़ेगा, कोई ना कोई चढ़ावा चढ़ाना पड़ेगा, कोई ख़ास खाना बना के उसके सामने रखना पड़ेगा। आप देखेंगे मंदिरों में और जगहों पर क्या होता है, आप वो खाना लेकर आते हैं और वो सामने पेश करते हैं, ये जी मैंने आपके लिए चॉकलेट केक बनाया है, ये मैंने रखा हुआ है, अब बस आप मेरी ये मन्नत पूरी कर दें। जब तक उस खुदा को कुछ दोगे नहीं वो आपको कुछ नहीं देगा। और ये तमाम मज़ाहिब में, यहाँ तक कि कुछ मज़ाहिब में तो इतना एक्सट्रीम था कि जंग होने वाली है और हम जीत नहीं सकते जब तक फलानी जो देवी है उसकी मदद नहीं आएगी, उस देवी को खून की एक कुर्बानी चाहिए, तो हमारी जो सबसे यंग लड़की है उसको कुर्बान करके पहाड़ी से फेंक दो फिर उस देवी की मदद आएगी। अपनी बच्चियों को वो ज़बह करते थे उस खुदा की मदद लेने के लिए, क्यों? क्योंकि उनका खुदा के साथ रिश्ता और खुदाओं के साथ और देवियों और देवताओं के साथ जो रिश्ता था ना, वो था एक तिजारती रिश्ता, ट्रांजैक्शनल। हम कुछ देंगे फिर वो कुछ हमें देगा। फातिहा में शुरू से ही अल्लाह ताला ने हमसे कुछ मांगा, पहले अपनी नेमतें बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हमने कुछ किया कि उसने किया है, उसने हम की मुस्तहिक चीज़ें की हैं खुद। फिर उसके बाद अर रहमान अर रहीम, हमने कुछ किया है भी कि वही कर रहा है, वही कर रहा है। यानी शुरू से ही हमारे किए बगैर हमें दिया जा रहा है, दिया जा रहा है, दिया जा रहा है, दिया जा रहा है। अब हमें कुछ शर्म आई, हमने कहा मेरे रब हम क्या करें, आपने इतना कुछ कर दिया, अब हमसे भी तो कुछ करवा लें, हमारे नाम क्या खिदमत है। और वो क्या है, एहदिना एहदिना, हमें कुछ तो कह दें। आप मुझे ये बताएं, हम जितना भी कर दें, अल्लाह ताला जो हमारे लिए करते हैं उसका मुकाबला किया जा सकता है ना? तो ये एहदिना में भी जो अल्लाह ताला जो हम हिदायत मांग रहे हैं ना, वो असल में अल्लाह ताला को पहचानने के बाद कम अज़ कम हमारे रब हम इस बात का इतराफ़ करते हैं कि हम आपका कभी हक तो अदा कर नहीं सकते, लेकिन अगर कोई छोटी मोटी ऐसी चीज़ है जो हम अगर पूरी कर दें तो आप हमसे राज़ी हो जाएं, आप हमारी इबादत कबूल कर लें, तो वो बता दें वो क्या होगी। यह है एहतिना। और फिर एहतिना के अंदर अगर कहा होता मुझे हिदायत दे दें, एहतिनी एहतिनी अस्सिरातुल मुस्तकीम, लेकिन हमने एहतिनी नहीं कहा, क्या कहा है, एहदिना। अच्छा, शुरू में जब हम्द की थी ना, जब मैं अल्लाह की हम्द करता हूँ दिल से, तो मैं आपके बारे में नहीं सोच रहा होता, किसके बारे में सोच रहा होता हूँ, अपने बारे में। जब मैं अल्लाह के बारे में कहता हूँ अर रहमान अर रहीम, अल्लाह की जो मोहब्बत है उसका मेरे लिए ख्याल है, किसके बारे में सोच रहा होता हूँ, अपने बारे में, इनफरादी बात है। मालिक यौमिद्दीन, मुझे आपकी फिक्र होती है, अपनी फिक्र होती है, अपनी फिक्र होती है। अभी तक जो सारी बात हो रही थी वो फर्द की थी, मेरी थी, तो यहां तक जो बात पहुंची तो मुझे कहना क्या चाहिए था, तवक्को क्या थी, मुझे हिदायत दें। अभी तो बात, हर बात का इशारा मेरी तरफ वापस जा रहा है, मैं रब, मैं अब्द हूं। लेकिन इबादत की और हिदायत की जो तलब हमने की है वो इकट्ठे की है, इसमें भी एक बात की तरफ इशारा है कि ये हिदायत अकेला इंसान नहीं कर सकता, अकेले इंसान के लिए बहुत मुश्किल है, उसको सपोर्ट की ज़रूरत है, उसको किसी ना किसी का सहारा चाहिए। हमें इकट्ठे हिदायत दें। और इसमें एक खुद गर्जी से भी निकाल दिया हमें, या अल्लाह मुझे हिदायत दे, बाकी भाड़ में जाए, बस मैं और तू। नहीं नहीं नहीं, इसमें अल्लाह ताला ने हमें एक दूसरे की फ़िक्र करना भी सिखाई। अगर मेरे रब में इतनी रहमत है, इतनी मोहब्बत है, इतना ख्याल है, और उसने मुझे बनाया है, तो मेरे अंदर भी उसकी कुछ झलक तो आएगी ना, कि मुझे भी किसी और का ख्याल है, मुझे किसी और से भी मोहब्बत है। और जो चीज़ मैं अपने लिए इतनी बुरी तरह चाहता हूँ, मैं सिर्फ अपने लिए नहीं चाहता, मैं सबके लिए चाहता हूँ। यह आखिरी जो तामुल है, इसके बाद मैं आपको ब्रेक देने लगा हूँ, ज़रा सोचना इसके बारे में। अगर इसका मफहूम आप वाकई समझे हैं, मुझे हिदायत देने कहा, हमें हिदायत दें कहा है, अगर इसको वाकई हम समझते हैं, इसका मतलब पता है क्या है, मुझे औरों के लिए क्या चीज़ चाहिए, जो हिदायत मुझे अपने लिए चाहिए, वही हिदायत मुझे उसके लिए चाहिए। और जिस नरमी से और जिस नरम दिल से मैं अल्लाह ताला से हिदायत मांगता हूँ ना, उसी नरमी से मुझे किसी और के लिए भी हिदायत चाहिए। तो जब आप किसी को बड़ी नफ़रत से हिदायत देने की कोशिश करते हैं, जब आप ये लोग तो जहन्नमी है जहन्नमी, इनको देखो काफिर हैं ये काफिर, ये फलाने ऐसे हैं, ये फलाने मुशरिक हैं, ये फलाने जिस जो अल्फाज आप इस्तेमाल कर रहे हो, ये एहतिना की रूह से सही है कि नहीं? अगर वाकई एहतिना समझे हो और कोई बहुत ही गलत रास्ते पर है, बहुत ही गलत रास्ते पर है, इस फातिहा के पढ़ने में आपने उसके खिलाफ दुआ की है कि उसके लिए दुआ की है? उसके लिए दुआ की है, उसके लिए। और जिस जज्बे से अपने लिए दुआ की है, उसी जज्बे से उसके लिए दुआ की है। ये नहीं कहा अल्लाह मुझे हिदायत दे और उनको भी दे दे फिर भी हाँ चले उनको भी थोड़ी बहुत। एक दिन हम सबको इकट्ठे एक जैसे
1: जो मैं अपने लिए चाह रहा हूं और जिस तरीके से अपने लिए चाह रहा हूं उसी तरीके से किसी और के लिए भी चाह रहा हूं।
0: हमारा आजकल क्योंकि अब सोशल मीडिया का दौर है और ऐसा दौर इंसानियत पे गुजर रहा है कि हम एक दूसरे के अफकार को, एक दूसरे की बातों को अब दुनिया के हर कोने में इस तरह सुन सकते हैं जैसे पहले कभी नहीं सुन सकते थे। इसी तरह इस्लाम और इस्लाम से मुतालिक जो बातचीत हो रही है वो अब जिस लेवल पर हो रही है और जितनी ज़्यादा हो रही है पहले कभी नहीं हो सकती थी, राइट? हर तरह के लोग हर तरह की बात इस्लाम के बारे में भी कर रहे हैं, आपको मालूम है। लेकिन एक जायज़ा मेरा क्या है कि अक्सरियत बात जो इस्लाम के बारे में हम करते हैं ना, वो हम किसी और की तनकीद करते हैं। अक्सरियत ये गलत इसलिए है, फलाना गलत इसलिए है, इसकी बात इसलिए नहीं सुनो, इसको इस तरह गलत साबित करूँगा, इसकी इस तरह धज्जियाँ उड़ाऊँगा। और फिर वो जवाब में क्या कहता है, अच्छा मैं गलत हूँ, मेरी वीडियो देखना कि तुम कितने गलत हो। और एक दूसरे की गलतियाँ, और ये दोनों फिर गलत वीडियो, एक दूसरे की गलतियाँ वीडियो रिलीज़ करने के बाद फिर नमाज का टाइम होता है और दोनों इकट्ठे खड़े होकर कहते हैं अपने अपने घरों में इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। आयत का मजाक नहीं बना लिया हमने? और ये कोई बहुत गहरी तालीम है जो बहुत बहुत कुरान पढ़ने के बाद कई सालों बाद जाके समझ में आएगी, तो पहले सफ़े पर है यार। ये तो जब आपने इस्लाम कबूल किया था तब से आपके जहन में ये बात आनी चाहिए थी कि मुझे बाकी इंसानियत की फिक्र है, मुझे उनको गलत साबित नहीं करना, मुझे उनके लिए भलाई चाहिए। और जो रहमत मुझे अल्लाह दे रहा है उसी रहमत का तकाजा है कि मैं लोगों के साथ भी रहम से, मोहब्बत से, इखलास से, खलूस से बात करूँ। और अगर मेरा वाकई किसी के साथ इख्तिलाफ है मुझे क्या करना चाहिए? मैं समझता हूँ कि वो बहुत बड़ी गुमराही में पड़ गया है, मुझे फिक्र है, क्या करूँ, वीडियो बनाऊँ उसके बारे में? अगर आपको किसी की फिक्र हो, अपने कज़न की फिक्र हो कि वो किसी गलत रास्ते पे चढ़ गया है, तो आप उसकी वीडियो बनाओगे कज़न की? मेरा कज़न जो है वो, मुझे लग रहा था कि वो शराब पीना शुरू कर दी उसने, तो मुझे उसकी बहुत फिक्र है और इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और उम्मीद है कि वो हिदायत के रास्ते पर आ जाएगा। अपलोड। या आपने उसके साथ मोहब्बत की है या उसके साथ नफरत की है, ये नफरत नहीं है। अगर वाकई उसकी फिक्र है तो क्या करते, उसके घर जाते, उसे गले लगाते, उसे साथ बिठाते, उसे कहते मेरे भाई हो तुम, क्या कर रहे हो, नहीं करो ऐसे, कब शुरू हुआ ये, आओ मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, आओ मैं तुम्हें रिहेबिलिटेशन सेंटर लेकर जाता हूँ, किसी से बात नहीं करूँगा, ये तुम्हारे मेरे दरमियान है। और ये किस चीज़ का तकाजा है, मोहब्बत का। एक तरफ तो खुतबा हो रहा है इन्नमल मुमिनून इख्वतुन, सारे मोमिन आपस में भाई भाई हैं, और दूसरी तरफ अपने भाई के ऊपर वीडियो बन रही है, भाई से बात कभी की है? नहीं नहीं नहीं। और फिर दूसरी बात, बात भी करोगे ना, अगर कोई कहे कि नहीं मैं उससे खुद बात करूंगा, और लोग कमेंट्स में भी लिखते हैं आप उससे खुद ही बात करें, हाँ मैं करूंगा बात उससे, वो बात करो, वो बात को रिकॉर्ड करके उसकी वीडियो बना के करो। दिस इज एहदिना नाउ, ये नया एहदिना है, इयाक नअबुदु इयाक नस्तईन एहदिना। अगर मैं तो कहता हूं अगर मुसलमान फातिहा पे गौर कर लेना तो उम्मत की शक्ल बदल जाए, हमारा पूरा डिस्कोर्स बदल जाए, किस किस्म का हम मवाद तैयार करते हैं, कैसे हम बात करते हैं, हमारा उसलूब क्या होता है, हमारा एटीट्यूड क्या, सारा का सारा बदल जाए। और अभी हम इस आयत में दाखिल नहीं हुए, सिर्फ इसका मैं ताल्लुक दिखाना चाह रहा था पिछली बातों से। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि क्योंकि हमने अल्लाह से दावा किया ना कि हम इबादत करने को तैयार हैं और हम मदद चाह रहे हैं, तो कैसी मदद हो और कैसी इबादत करनी हो उसके लिए अल्लाह ताला हम सबको इकट्ठे अपनी हिदायत दें। ओके, दो सवाल थे, इसमें से एक मुझे याद आ रहा है इबादत के बारे में, इबादत के कॉन्सेप्ट के बारे में, इय्याका नअबुदु। क्योंकि इस आप सबको इल्म होगा कि जो हिदायत हमने मांगी है इस सूरत में उसका जवाब बाकी कुरान है, यानी उसके जवाब में हमें ये पूरी किताब दी है, तो इसका मतलब यह होगा कि इबादत, इसकी तमाम तालीमात को इबादत ही समझा जाएगा। और इसकी तालीमात में नमाज शामिल है, इसमें कोई शक नहीं, زکوٰۃ شامل ہے اس میں کوئی شک نہیں، روزہ شامل ہے، حج شامل ہے، لیکن اس کی تعلیمات میں تدبر بھی شامل ہے، اس کی تعلیمات میں سوچنا بھی شامل ہے، سیکھنا بھی شامل ہے، اس کی تعلیمات میں غور کرنا، تاریخ کے بارے میں سیکھنا، اس کی تعلیمات میں جذبات کو سمجھنا، مختلف جذبات کو سمجھنا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس مشکل سے گزرے اس پر غور کرنا، یعنی عبادت کا کانسیپٹ ایک بہت بڑا کانسیپٹ ہے، اور اس میں کچھ چیزیں ہیں جو بہت واضح ہوتی ہیں جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ، لیکن اس قرآن نے اس کانسیپٹ کو بہت بڑا بنا دیا۔ لوگ عام طور پہ کہتے ہیں آپ کو قرآن ہمیشہ عمل میں لانا چاہیے، ایک ایک آیت کو آپ عمل میں لائیں۔ میرا سوال یہ، آپ الف لام میم کو عمل میں کیسے لائیں گے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ عمل میں کیسے لائیں گے؟ عمل میں لانے کی وہ آیات ہیں جن میں عمل کا مطالبہ ہے، اور آیات میں تدبر کا مطالبہ ہے، سوچنے کا مطالبہ ہے، دل کے لرزنے کا مطالبہ ہے، مختلف قسم کے مطالبے ہیں، ہر مطالبہ عمل نہیں ہے۔ عمل تو ایک پہلو ہے عبادت کا، لیکن عبادت کے اور بہت سارے پہلو بھی ہیں، اور کیونکہ باقی مذاہب میں ان سب کو الگ الگ کر دیا گیا، فلسفی اور ہو گئے اور عبادت کرنے والے اور ہو گئے اور احکام پہ زور کرنے والے اور ہو گئے اور جو ہے روحانیت کو سمجھنے والے اور ہو گئے، انہوں نے اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ کھول لیے۔ قرآن نے کیا کیا، ان تمام چیزوں کو ہمیشہ اکٹھا رکھا اور ایک کو دوسرے سے الگ نہیں ہونے دیا، اور یہی اصل عبادت ہے، اصل عبادت یہ ہے۔ اور یہ کانسیپٹ عبادت کا کمزور ہوتا چلا جاتا ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کے کلام سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ جتنا آپ اس پہ غور کرو گے آپ کا کانسیپٹ خراب نہیں ہوگا، جتنا اس سے دور ہوتے چلے جاؤ گے عبادت کے کانسیپٹ میں کمزوری اور کمی آتی چلی جائے گی، یہاں تک کہ اس مقام تک پہنچ جائیں گے کہ ہم کہیں گے، کسی کے بارے میں کہیں گے عبادت کر رہا ہے اس کا مطلب یہ نماز پڑھ رہا ہے، لیکن اگر وہ کمائی کر رہا ہے اپنی فیملی کے لیے تو یہ نہیں کہیں گے عبادت کر رہا ہے، رائٹ۔ جب سلیمان علیہ السلام گھوڑوں کی تیاری کر رہے تھے وہ عبادت کر رہے تھے، لیکن ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ یہ عبادت ہے۔ جو تجارت کر رہا ہے اور اس کے ذریعے سے حلال روزی کما رہا ہے وہ بھی کیا کر رہا ہے؟ عبادت کر رہا ہے، وہ عبادت کر رہا ہے۔ تو اس کا ایک جو جامع تصور ہے نا، اس کو اپنے سامنے رکھنے کی بہت ضرورت ہے۔ خیر، تو یہ ایک بات تھی۔ دوسری بات تھی مضارع کے بارے میں کہ ایاک نعبد، میں یہ نہیں کہا ایاک عبدنا و ایاک استعنا، ہم نے آپ کی عبادت کی، ہم نے آپ کی مدد مانگی، یعنی ماضی میں کہا جا سکتا تھا، لیکن مضارع استعمال کیا ہے۔ مضارع عربی میں مضارع جو ہے نا، یہ حال اور مستقبل دونوں کو شامل کرتا ہے، تو میں نے ترجمہ ایک طرح کیا تھا لیکن اصل میں ترجمہ دونوں طرح ہے۔ ہم آپ کی عبادت کر رہے ہیں اور کریں گے، ہم آپ کی مدد مانگ رہے ہیں اور مانگیں گے، اس طرح بھی کر سکتے ہیں مانگتے رہیں گے، اس طرح بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، وہ بھی صحیح ہوگا، مانگتے رہیں گے۔ تو ہم نے ایک کمٹمنٹ کی ہے ابھی کی اور فیوچر کی، مستقبل کی، ان الفاظ کے ذریعے سے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اوکے، دوسرا ایک سوال آیا تھا العالمین کے بارے میں پہلے، کہ العالمین میں تفسیر میں اکثر و بیشتر یہی کہا جا رہا ہے کہ العالمین میں نباتات، جمادات، پرندے، جانور، جنات، تمام عالم، تمام دنیائیں، تمام جہانوں کا مالک نا، تو اس کی طرف اشارہ ہے۔ میں اس بات کا انکار نہیں کرتا، میں کہتا ہوں کہ قرآن کے الفاظ، جہاں تک میں نے قرآن سمجھنے کی کوشش کی ہے نا، تو قرآن کے الفاظ میں دو طرح کے مفاہیم ہوتے ہیں، ایک کو کہا جاتا ہے المعانی الاوائل اور دوسرے المعانی الثوانی۔ انگلش میں سمجھ لیں، پرائمری میننگز، سیکنڈری میننگز، پہلے درجے کے معنی، دوسرے درجے کے معنی، اور یہ قرآن میں بہت جگہ ہوتا ہے، اور ان میں سے کسی ایک کا انکار کرنا غلط ہوتا ہے۔ میں ڈاکٹر فاضل صالح حسام رائی کے کام سے بہت متاثر بھی ہوں، انہوں نے قرآن کی بلاغت پہ بہت کام کیا ہے، عربی میں ہی کام کیا ہے، عراقی ہیں وہ، سامرا سے، ابھی بھی بغداد میں ہوتے ہیں۔ انہوں نے العالمین کی جو شرح کی تھی اس کے سٹرکچر کی بنیاد پر، اس کی بنیاد پر میں نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی تھی، اور میرے نزدیک یہ بات نہ صرف کانٹیکس کے اعتبار سے سینس رکھتی ہے، اور اس کو پرائمری رکھنا چاہیے اس صورت میں जो अवाइल मायने हैं इसमें इख्तिलाफ हो सकता है कि अवाइल मायने कौन से हैं। इनकार नहीं किया जा रहा एक का या दूसरे का, लेकिन पहले दर्जे के माने किसके हैं, नंबर वन पे किसको रखना है, नंबर टू पे किसको रखना है। मेरे नज़दीक नंबर वन पे ज़वील उकूल, ईना से ज़वील उकूल निकलते हैं, यानी फरिश्ते, जिन, इंसान, रूहें, ये तमाम आलमीन में शामिल होंगी, इस दुनिया में या आखिरी में, अगली दुनिया में। लेकिन क्योंकि इस सूरत का असल मकसद इंसानियत से खिताब है और इसका असल मकसद हिदायत है हमारे लिए, इसलिए पहली प्रेफरेंस मीनिंग की उस मानी को देनी चाहिए जो इसके साथ फिट करती है। तो सियाक से पता चलता है कि कौन से मायने को पहले दर्जे पे रखना चाहिए। ठीक है, खैर।
2: सब्सक्राइब नाउ टू द बेगिना यूट्यूब चैनल टू वॉच द रेस्ट ऑफ दिस सीरीज एंड मोर ग्रेट कंटेंट फ्रॉम उस्ताद नुमान अली खान। कमिंग अप नेक्स्ट टाइम ऑन आखिरी मौजज़ा।
0: जिस तरीके से इंसान मांगता है ना, उससे पता चल जाता है उसको किसकी कितनी ज़रूरत है। आपके बच्चे आपके पास आके कहते हैं मुझे 500 चाहिए, मुझे 1000 रुपये चाहिए। जिस तरीके से मांग रहा है, मांगने देने का दिल नहीं जाता। फिर आप बच्चे को तमीज़ सिखाते हैं कि पूछा कर, तमीज़ से पूछा जाता है, अदब से पूछा जाता है, और फिर आप नमाज़ पे खड़े हो कहते हैं अल्लाह अकबर। उसको तो तमीज़ सिखा दी कि मुझसे कैसे पूछते हैं, और जिस तरीके से हम अल्लाह से पूछते हैं एक दिन सुना तो उस तक ही।